0: वाह
1: जेड़े पाए तू मत गाते
0: थारी
1: बीच कुटड़िए खाते
0: वाह वाह
1: जेड़े पाए तू मत गाते थारी बीच कुटड़िए खाते हुण तू ना कर काटे वाते हुण तू ना कर

0: से पहले ये बोलते थे मैं प्रकाश कौर हूँ अमृतसर से गा रही हूँ,
1: अच्छा।
0: मैं फुला हूँ बेगम अख्तर हूँ, मैं मुकेश माथुर हूँ,
1: अच्छा।
0: मैं मोहम्मद रफी हूँ,
1: अच्छा।
0: ये गाने के साथ बोलते थे वो लोग बीच में, यानी गाना समझिए रुका नहीं, यानी खत्म होने से पहले बीच में कॉमा फुल स्टॉप से पहले,
1: अच्छा।
0: ये इस तरह से बोलते थे, एक रस्म थी ये,
1: अच्छा।
0: तो पुराने एक रिकॉर्ड बाबूजी के पास था, मैं देखा तो उसमें हसन सिंह मस्ताना साहब का एक गाना था वो पंजाबी में छोटा सा कुछ, तो उसके अल्फाज तो मेरे को याद नहीं है, बहुत छोटा था मैं, लेकिन वो बीच में वो उसे चाबी से भर के चलता था ग्रामाफोन दादाबा के जमाने का,
1: जी जी।
0: तो वो लगाते रुक के एकदम बोलते थे मैं हसन सिंह मस्ताना लाहौर विच गल कर रहा
1: जी,
0: इस तरह
1: जी,
0: से उनका बन, तो वो दौर वो आ नहीं सकता। बहरहाल मेरा गाना एक पसंदीदा है वो ये है कि एक शेर बड़ा याद आया आपकी बातचीत पे कि यारो हमारे साथ एक अजीब वाकया हुआ, यारो
1: जी
0: हमारे साथ एक अजीब वाकया हुआ, हम ठहरे रह गए हमारा जमाना निकल गया,
1: अच्छा
0: यानी हम ठहरे रह गए हमारा जमाना निकल गया,
1: गया
0: जितने पुराने लोग हैं बोलेंगे ना यार वो गल आती नहीं, वो कैसे आएंगे बताइए दादा के जमाने का। तो मेरा गाना फेवरेट है, हो सके तो लगा दीजिए, मैं बड़ा पसंद से सुनता हूँ कि वो दिन नहीं आंधे मुड़के बैठे सी टप्पर जुड़ के,
1: अच्छा, अच्छा,
0: कुंडे दा चटनी सीधे कुंडे दा डर होता तो वो बड़े वो साहब बैठे रहते डंडा लेके, एक दफा कुंडे का जिक्र भी करे थे टॉपिक में कि यार वो बाबा देगा कुंडे से डर लगता था, आते बुला के होते जाते मम्मी बोलते थे उठे चले जाओ दादाजी इंतजार कर रहे थे, ओ यार मैं उठे क्यों जाना, तो ये बातें हैं बड़ी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आई लव योर शो,
1: थैंक यू,
0: थैंक यू जनाब, थैंक यू, थैंक यू।
1: सो दोस्तों तुसी कोई गाने दी फरमाइश करनी होवे, टाइम तो साडे कोले ओना ही है, लेकिन कोशिश मेरी होएगी, लेकिन जे कर कोशिश कामयाब ना होवे तो मैनू माफ करियो जरूर, ते लेकिन अगले प्रोग्राम वल चलदे आ, अगली गलबात आप वल चलदे आ, ते ढींसा साहब दी पसंद दा गाना मैं कढ़िया, तो उस तो बाद एक आप मैसेज भी लवांगे, पहला सुनो ये प्यारा जिहा गाना।

0: multiple locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: जे तुसी भी करना चाहते हो अपना खुद का रेडियो प्रोग्राम तो आज ही सानू कॉल करो 6475041557।
2: डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नूं मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहणगे।
3: SNS लॉयर्स को इन्हां सारे सवालां दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानने लई या सलाह लैण लई अज ही SNS लॉयर्स नूं कॉल करो 416-655-2000।
4: Get ready! GTA, are you

0: कीजिए अल्फा ऑप्टिकल जकूजी एंड विलियम्स पार्कवे में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, उनकी स्पेशल देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल डॉट सी ए पे चाहिए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-450-5333 कॉल कीजिए 9054562733। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।
1: बाबू जी हमारी फिर अपना टेस्ट निकाल कर लगते हैं, दिल कर रहे हैं।

0: top samosa and sweet factory at all leading grocery stores.
1: यहाँ से आपको ढाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात सिदोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 वेलिनी ड्राइव यूनिट 9 एंड 10 ब्रांटन, टेलीफोन 905-799-9400।

सुखा तेरी मंडली तेरा मन तन आरोग गुनगा भवनित राम के ए अवखद जोग आए बसों का देश में ए भले संजोग नानक प्रभु प्रसन्न भए लहे।

सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निर्भया मिलावत मिला पंजवा रोग मिटाया कब उपजा सुख साथ बट पता बचरज रूप हरि निदान गुरु गोविंद कृपा करी रखिया मेरा भाई हम तिसकी शरणागति जो सदा सहाय।

आई, चौके ते हमारे राम नाथ दुख लगे ना भाई। सतगुरु पूरा पेटिया जिन बन बनाई, राम नाम औखत दिया एका ने लाई रहाओ। राख लिए तिन रखन हार सब ब्याज मिटाई, कहो नानक कृपा पई प्रभु पई।

साथ सहज आनंद पहे पूर्ण पैसे रहा भक्त जना की बेनती सुनी प्रभा रोग मिटाए जीवा जा का मन।

मध्यम पातु सुराराध्य पातु नाभिम खगेश्वरः कटिम कलात्मजः पातु गुरुम पातु सुरेश्वरः जा

लक्षण कारक विषम स्थान संभूता पीड़ा भरत मे रवि रोहिणी सुधा मूर्ति सुधा गात्र सुदर्शन विषम स्थान संभूता पीड़ा भरत मे विदु भूमि पुत्रो महातेजा जगता भय कृत्सदा।

भारत में पुरह देव मंत्री विशालाक्ष सदा लोकहिते रतः अनेक शिष्य संपूर्ण पीड़ा भारत में गुरु दैत्य मंत्री गुरुस्तेषां प्रणवश्च महाद्युतिः कर

0: ਸਮੋਸਾ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ $4.75 ਪਰ ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ। ਬੇਸਣ, ਪਿਸਤਾ, ਰਸਗੁੱਲੇ ਔਰ ਜਸਟ $5 ਪਰ ਪਾਉਂਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਸਟਮਰਸ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸੇਲ 2026 100% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੇਡ ਟੌਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਵੀਟਸ। ਹੁਣ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। 2 ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 1850 ਐਲਗਨ ਰੋਡ, ਈਟੋਬੀਕੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-213-1165।
1: जी हाँ, एक आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राम, जय अली मदद। और आपके लिए अभी हालांकि वो जो ओंटारियो में जंगली आग जिसको कहते हैं वो जारी है, तो उसकी वजह से धुआं जो है स्मग है उसकी वजह से, और सीनियर्स को खास करके अपना ध्यान रखना चाहिए, अपने आप को पानी पीना चाहिए खूब सारा, और अंदर घर के भी कितना देर रह सकते हो फिर भी कोशिश करिए, अपने आप अपना ख्याल रखिए। तो आइए इसी विचार के साथ प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ते हैं। अभी आपके लिए गुरु पूर्णिमा आने वाली है अभी, तो पहले आपको बता दें कि आप अगर फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर, बढ़िया क्वालिटी का टीवी, बढ़िया गैजेट किचन में लेके आना चाहते हो, लेटेस्ट एडवांस आपको टीवी चाहिए, आपको बारबेक्यू चाहिए, तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे आपको बढ़िया प्राइस, बढ़िया क्वालिटी का सामान मिलता है, और आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट मॉडल मौजूद है। लोकेशन, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाइए, क्योंकि स्पेशल देखें और फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है कि अब आपके लिए मास्टर कोलिजन डिपो लंदन में खुल चुके हैं, खुलेंगे बहुत जल्दी, ओपनिंग होगी। तो अगर आपका कोलिजन का काम हो किसी तरह का भी, तो आप mastercollision.com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारियां ले सकते हो। लंदन के आसपास के इलाके में आपको किसी किस्म का भी कोलिजन का काम करवाना हो तो आप मास्टर कोलिजन डिपो पे जाइएगा, आपको हर तरह की बहुत बढ़िया सर्विस मिलेगी, बहुत बढ़िया प्राइस भी आपको मिलेगी, तो आप मास्टर कोलिजन डिपो में जाइएगा। और अब अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी जैसी है किचन वाटर गोल्फ में, तो आप निशिफिंड को कॉल करिएगा 5462-1265-95461260। घर लेने के बाद आपको मूविंग होना पड़ता है, तो मूविंग के लिए एचके मूवर्स बहुत बढ़िया, उनकी बहुत सारी टीम्स हैं कनाडा भर में, आपको मूव होने में मदद करते हैं। तो अगर आपने मूव होना है तो आप आज ही अपना ट्रक बुक कर लो 416-524-704 पर कॉल करके 416-524-6704 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो आइए अब आपको एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाते हैं।

जी हाँ जी, लता जी का गाया हुआ बहुत ही प्यारा सा गीत है आपके लिए। तो अब और भी बहुत से बढ़िया बढ़िया गीत आपको सुनाएंगे, रात को भी आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे बढ़िया बढ़िया गीत लेकर के आपके लिए, मनोरंजन बढ़िया सा लेकर के। तो अब आपके लिए आजकल समर है तो सड़क पे आपको बहुत ध्यान से गाड़ी चलानी है, क्योंकि बहुत सारे बैड ड्राइवर्स हैं, एकदम आपके सामने आ जाते हैं, आपकी टाइमिंग एकदम खराब कर देते हैं। तो इसलिए सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर आप अपने कार के आगे काफी सारी जगह खाली छोड़ के चलो तो अच्छा है, क्यों तो बहुत सारे ड्राइवर आपको हॉर्न देंगे, आपको पुश करेंगे, लाइट से फ्लैशिंग लाइट देंगे कि जल्दी जल्दी चलो, आगे आगे जाओ, यू नो। तो आपको आपका टिकट या आपको कोई तकलीफ होगी वो तो नहीं झेलेंगे ना, इसीलिए फिर आप इस तरह की चीज को जो है इग्नोर करें और सड़क पे रोड रेज ना करें, गुस्से में ना आए। और साथ में आपको ये मैं बताना चाहती हूँ कि आजकल बहुत सारे लोग जो है सड़क पे एक्सीडेंट्स फेस कर रहे हैं, जैसे कि आप ने टर्न बना ली तो वो जो आगे वाला होता है वो अचानक खड़ा हो जाता है, और आपको तो टर्न बनानी ही है क्योंकि दूसरी तरफ से ट्रैफिक चलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए अगर आपको शक है कि जो आगे वाला आपके कार वाला वो थोड़ा फनी तरीके से पेश आ रहा है, तो आप टर्न बनाए ही ना, लाइट की वेट कर ले, अगली बारी लाइट होगी तो फिर आप टर्न बनाना अपनी सेफ्टी के लिए। और फिर दूसरी बात ये है कि ऐसे लोगों को किसी से हमदर्दी नहीं कि जो एक्सीडेंट स्टेज करने की कोशिश करते हैं, तो उससे आपको अपने आप को बचाना है। बस यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती थी, क्योंकि समर टाइम है तो सभी का मन होता है कि बाहर घूमने निकले, सर्दियों में तो अंदर ही बैठे रहते हैं कि चलो जरूरत नहीं है तो मत जाओ, अपने जो जो भी आपने लेना हो तो आप अपना ट्रिप प्लान करके जाते हो। तो ये आपको अगर अपने फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर बढ़िया लेना है, बढ़िया टीवी लेना है, बढ़िया आउटडोर फर्नीचर लेना है, बढ़िया बारबेक्यू चाहिए, इतना थोड़ी सी सेटअप करवानी है, तो ये सारा कुछ आपके लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स से मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड्रॉइड रोड पर मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी गोल्फ में है। उनके स्पेशल देखने के लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए, फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल करो, 905-799-0045। और अब आपके लिए समोसा आइसक्रीम फैक्ट्री एल्बियन पर मौजूद है, उनके वहाँ बहुत सारा सामान बिकता है, जहाँ पे सामान बहुत बिकता हो तो आपको खाना जो होता है फ्रेश मिलता है, चाहे मिठाइयाँ हो चाहे खाना हो, बढ़िया क्वालिटी का मिलता है। तो आपके लिए अब बहुत बढ़िया सा गीत सुनाते हैं। पहले आपको बता दें कि अगर आपने ट्रक रिपेयर करवानी है तो 1715 मौजूद है बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर, और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लो 905-625-0055 पर कॉल कर सकते हो। आपने आपके लिए खुशी की खबर है कि अब मास्टर कोलिजन डिपो लंदन में खोलने जा रहा है, तो बड़ी ग्रैंड ओपनिंग होगी तो आप जरूर जाइएगा, और अपनी कार का जो भी आपको कोई काम करवाना हो तो कोलिजन का काम तो आप मास्टर कोलिजन डिपो पर जा सकते हो लंदन में आसपास के इलाके में भी। अब आपको अगर किसी किस्म की भी आपको मिठाइयाँ लेनी है, खाना लेना है बढ़िया, तो न्यू इंडिया स्वीट्स रेस्टोरेंट ब्रिटानिया ग्रैंड दुबई मौजूद है, और जानकारी के लिए 905-844-1780 पर कॉल करो, 905-814-1730 पर न्यू इंडिया स्वीट्स रेस्टोरेंट को कॉल कर सकते हो। अब अगर आपने मूव होना है तो HK मूवर्स आपके लिए, उनकी बहुत सारी टीम्स हैं, आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाएंगे, कनाडा भर में मूव करने में मदद करते हैं। तो आप अपना ट्रक बुक करने के लिए मूविंग के लिए 416-524-704 पर कॉल कीजिए, 416-524-6704 पर कॉल कर सकते हैं। तो आइए अब आपको ये एक बढ़िया सा गीत सुनाते हैं।

0: Mira, Equus es el
1: program
0: versus army. मतलब क्योंकि आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा तो अब आपके लिए और भी बहुत प्यारे प्यारे से गीत सुनाते रहेंगे आपको. रात को भी 10 से 11 बजे आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे. तो अब अगर आपने फ्रिज स्टोव लेना है, वाशर ड्रायर लेना है, फिर आपको ऑर्डर फर्नीचर चाहिए, बाकी क्यों चाहिए, टीवी बढ़िया से चाहिए, किसी को गिफ्ट लेके देना है, शादियाँ आजकल बहुत हो रही हैं, तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स से जाइए. टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाकर उनकी स्पेशल देखिए. एक लोकेशन उनकी आपके लिए इंटरमॉडल उनकी गोल्फ में है, तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाकर आप उनकी स्पेशल देखिए. फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए. 905-799-0045 टोरंटो आसपास के इलाके में घर खरीदना बेचना चाहते हो खुश वासिंग बैंस को कॉल करो 416-6673-4416-677-1313 पर आप कॉल कर सकते हैं. तो आपके लिए एक और बहुत ही नटखट सा गाना मैंने चुना है. तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग.

0: जी अनिता जी का उषा मंगेशकर गाया हुआ जो गीत था तो आजाद फिल्म आई थी उसी का ये दिलीप कुमार उसमें थे तो उनकी तो फिल्में कमाल की थी जितनी भी है। तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर से साथ आप और मैं हूँ आपकी होस्ट लीरा। आपको जिन्होंने ये गाने सुने थे पसंद किए थे हमने उनको उनकी पसंद के लिए कर दी है। आपको अगर कोई गाना पसंद है तो आप vaccinesarradio@gmail.com पे ईमेल कर सकते हैं। जो आपकी कोई पिकनिक है अभी समर में बहुत सारी पिकनिक्स हो रही हैं तो जैसे हैमिल्टन मंदिर वालों की भी पिकनिक है मेरे ख्याल कल है तो आप जरूर उसमें शामिल हो सकते हैं उसमें जा सकते हैं तो हैमिल्टन मंदिर वालों की पिकनिक है। अब आपके लिए अगर आपने मूव होना है तो HK मूवर्स आपकी पूरी मदद करते हैं कनाडा भर में मूव होने के लिए। अब और बहुत सारी उनकी टीम्स हैं आपके सामान को फादर से पहुंचाते हैं और अपना ट्रक बुक करने के लिए मूविंग के लिए 416-524-404 पर कॉल कीजिए 416-524-6704 पे कॉल कर सकते हो। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार तो आइए आपको एक और बहुत ही आरजू फिल्म का ये गीत सुनाती हूँ। आरजू फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म थी 1965 उसमें महमूद थे आपको मौका मिला तो जरूर देखना।
1: फूलों की रानी
0: मौसम हर तरफ फूल खिले।

जी हाँ, उम्मीद रखती हूँ कि आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। तो अब आजकल समर है, बच्चों को छुट्टियां हैं, तो बच्चे कई बार सड़क पे खेल रहे होते हैं, तो उनका ध्यान रखिएगा जब भी आप गाड़ी चलाइएगा। और हाईवे पे जब गाड़ी चलाते हो तो जो आसपास में देखिएगा ट्रक वालों का, उनसे डिस्टेंस रखिएगा। और फिर आपको अगर कोई जैसे किसी भी मौके भी आपको गाड़ी जो है ना अपना ध्यान से चलाइएगा। तो अब मौसम थोड़ा गर्मी है, तो जो आप अपने आप को खूब कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। तो अब आपके लिए एक और गाना बहुत ही प्यारा सा सुना है, पर पहले आपको बता दूँ, अगर आपने लड्डू जिलेबी या समोसे बढ़िया मिठाइयाँ लेनी है तो आप समोसा स्वीट फैक्ट्री LGM पे जाइएगा। उनको ऑर्डर बुक करने के लिए 416-213-1100 पर कॉल कीजिए। 416-213-1165। अगर आपकी कोई पिकनिक होने वाली है, अगर आपके घर में कोई फंक्शन है, खाना ऑर्डर करना है, तो समोसा स्वीट फैक्ट्री वालों से करिएगा। आपको एकदम फ्रेश खाना, बढ़िया खाना मिलेगा। अब आपके लिए ये गीत पेश है, लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर से साथ, और मैं हूँ आपकी होस्ट नीरा।

फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो मुझे पक्का यकीन है आप जैसे मुझे ये गाने सुनकर के बहुत ही बढ़िया अच्छा महसूस हो रहा है, आप भी जरूर बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे ये गाने सुनकर के। तो अब आपके लिए पंजाबी का गीत सुनाते हैं मिस पूजा का। जी हाँ, तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिएगा, गर्मी है तो पानी खूब पीजिएगा, अपने आप आसपास में गाड़ी चलाइएगा तो ध्यान से चलाइएगा, बच्चों को छुट्टियां हैं तो सड़क पे आप ध्यान से जाइएगा। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको आपने मिठाइयाँ लेनी है, लड्डू लेनी है तो समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री पर आप जाइएगा। आपको तो वाशर ड्रायर चाहिए तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पर जाइए। तो आपने मूव होना है तो इसके मूवर्स को कॉल कीजिए 416-524-7704 पर कॉल कर सकते हैं। मास्टर कलीजन के थ्रू आपके लिए खुशी की खबर है, आप लंदन में खुलने वाले हैं तो आपको सेवाएं देंगे। कलीजन की हर तरह की सेवाएं आपको लेनी हो तो मास्टर कलीजन के थ्रू पर जाइएगा। अब मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पारे स्वर्ग कला है वंडरफुल डे। कल रात को भी आपकी सेवा में हाजिर, आज रात को भी आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे बहुत बढ़िया बढ़िया गीत लेके, आपका मनोरंजन करने के लिए, आपके साथ समय बताने के लिए। तो नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाणी स्वाद पला हैव ए वंडरफुल वीकेंड। जो भी है आप जरूर वॉक के लिए जरूर जाइएगा। तो और कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जरूर कीजिए, चाहे घर पे बैठे चेयर पे ही क्यों ना कर लें, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ अपने एक्सरसाइज का जरूर ध्यान रखें। अभी समर में तो ज्यादा ना करें, थोड़ा बहुत जरूर हिले जुले, अपने शरीर को फिट रखें, अपने आप को फिट रखने के लिए। तो इसीलिए आप जरूर कोई ना कोई प्रोग्राम अपने लिए बनाएं, एक्सरसाइज का प्लानिंग करें। So enjoy this beautiful thing.

0: अग नहीं लगेगी शायद।
1: अपने परिवार की रक्षा करो, सिर्फ लाइसेंस इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर ही वरतो, अते यकीनी बनाओ कि ईएसए परमिट हासिल करन। होर जानने लई hirelicense.ca ते जाओ। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी अथॉरिटी वल्लों एक सुनेहा।
2: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स

किस्मत तेरी, नाम तेरा, कुछ नहीं जो मेरा, स्वास भी तेरे, एहसास भी तेरा, एक तो ही सतगुरु मेरा। मैं हाँ संतोष कौर, मैं तुहाडा सब दा स्वागत करदी हाँ अपने प्यारे जे शो रेडियो आवाज़ ते। ते साडा सारयां दा सफर 1 बजे तक इंज ही बनिया रहेगा, ते सुनदे रहो साडा शो रेडियो आवाज़।

चलो जी हुन शुरू हो गया है अपना साथ। सो कॉल करो 905-673-3337 ते अज बहुत वधिया वधिया डील्स आ रही है। सो साढ़े सारे प्राउड स्पॉन्सर सानू इन्ने वधिया वधिया मैसेजेस कर रहे और सोहनिया सोहनिया डील्स दे नाल। सो सब तो पहला मैं गल करांगी नज़ारा रेस्टोरेंट दी। नज़ारा ते तुसी जाना है ते सारे ने लेना है नज़ारा। नज़ारा दियाँ डील सुन के सारे दे मूँह च आ जाना है पानी। और अगर तुसी सारे ने अपने घर कोई भी किसी तरह का भी फंक्शन करना है किसी तरह की कोई पार्टी करनी है तो मैं कहांगी एक बार तुसी नज़ारा ते जरूर जाओ। उन्हां दे पेज ते जाके देखो रीसेंटली उन्होंने बहुत वधिया पार्टीज ऑर्गेनाइज की हैं। जे किसी का बेबी शावर हैगा या किसी ने किसी नूं कोई भी सरप्राइज देना आ जेंडर रिवील करना आ या इंगेजमेंट पार्टी है या छोटा मोटा तुहाडा गैट टूगैदर है किसी की बर्थडे आ ते सारे जाने ने पहुँचना नज़ारा और तुहानूं कुछ ना कुछ स्पैशल देंगे। सो नज़ारा दी टीम दा तुसी नंबर नोट करो 905-451-2600 905-452-2600। कभी भी किसी ने कोई पार्टी करनी है या इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना है तुसी बस नज़ारा दी टीम नूं जाके मिलना है। सारियां गेम्स तुहाडियां हर तरह दी अरेंजमेंट उन्होंने करना और रीसेंटली जिहड़ा ही उन्होंने पार्टी कीती ओह ते देख के मेरा मन खुश हो गया। जिवें असीं करदे हुंदे सी ना इंडिया दे विच पार्टीज हुंदियां सी विआह हुंदे सी आउटडोर इनडोर दोनों तरफ असीं पूरी मस्ती विच रहिंदे सी। सो सेम नज़ारा ने भी तुहानूं उही सर्विसिज दित्तियां। एक वारी जाके नज़ारा दा तुसीं देखो सैटअप और नज़ारा ते जाके तुहानू सारयां नू आ जाना है नज़ारा।

0: सो कई लोग साउथ दे ने, मेरे दोस्त ने अपने नाँ नाल पिता ते दादे दा नाँ लाउंदे रहे, ते साडे पिता दशमेश दा नाँ ही कट दित्ता सी। सुखविंदर सॉरी, मैंने कोई गल नूं बुरा ना मन्नियो, पर एक कर लिया करो।
1: नहीं, हाँ जी सुखविंदर कौर है मेरा नाम।
0: हाँ सुखविंदर, सुखविंदर वैसे तुसी काम की कर रहे हो?
1: मैं रिटायर्ड
0: ओ तेरी मैं फिर गेर बदलिया नाल जगर पे गया रिटायर। अच्छा, पोतियां नू
1: काम
0: या
1: कीता
0: पोतियां नू दोतियां नू
1: नहीं।
0: एंजॉय करते हो?
1: हाँ पोते पोतियां नू एंजॉय करते हैं।
0: वेरी गुड, जिउंदे वसदे रहो। ते तुसी उन्ने चिर देखो, मैं थोड़ी गल दसा, थोड़ा कोई बीमारी नहीं छेती लगनी, थोड़ी आवाज सुन के दस रहा थोड़ा मैं, जे कुछ है तो उमें चली
1: हाँ
0: चुली
1: जी
0: जाऊ माड़ा मोटा, अगे नहीं वधूगा।
1: हाँ
0: मेरा ना एक दोस्त है, उहदा नाम अमृतपाल है,
1: हाँ जी
0: उन्हें मैनू ना
1: हाँ
0: कॉल
1: जी
0: कॉल किया, कहना मेरा मेडिकल रिपोर्ट आया, कैनेडा आना सी मेडिकल होया था। एक मेरा भरा
1: हाँ जी
0: छोटा मेरे तो, वह कहना मेरा भरा बार बार मेरी रिपोर्ट में पढ़ी जाता भी ठीक है कि गलत है। वह रोज़ पैग दो लाता, खाता
1: हाँ
0: वधिया,
1: जी
0: चिंता जमा ही नहीं करता, जमा ही नहीं। उन्हें नहीं जोर लाया जिंदगी च, मैं कुछ जोड़ना, एक मकान बनाया सारी जिंदगी च उन्हें, दो गड्डियां लिया ने, टेंशन नहीं लेनी
1: हाँ
0: बस।
1: जी शायद मैं भी उन्हें हर गई
0: तो
1: हाँ
0: मैं तुम्हें आवाज सुन के कहता, तुम्हें क्या नहीं कहता, मैं क्या ना आवाज सुन के थोड़ी मैं ओके। जसविंदर,
1: हाँ जी
0: जसविंदर सिंह ने तुहानू असीं तुहाडा नाम दस्सांगे, तुहाडा निकल
1: नहीं
0: गया।
1: सुखविंदर कौर
0: नहीं, तुसीं सुणदे रहो, जसविंदर तुहाडा लंच स्पॉन्सर करनगे
1: ओ
0: तिन
1: सॉरी
0: जाणे दा, ठीक है?
1: नहीं सॉरी भाजी अज मैं इत्थे नहीं हैगी, मैं आपदे ग्रैंडकिड्स नूं देखण चली हां लंदन नूं।
0: ओ वेरी गुड, जिउंदे वसदे, ड्राइव सेफली। चलो भाई पहला तुहाडे बारे बोलदी है, डेट ऑफ बर्थ दुबारा बोलियो की है।
1: हाँ जी
0: डेट ऑफ बर्थ की है तुहाडी?
1: 1958
0: नहीं, कल्ला डेट ऑफ बर्थ
1: जनवरी
0: बोल दो।
1: 15
0: जनवरी
1: ओ
0: 15?
1: 58 1950
0: नहीं जनवरी 15 है,
1: 1958
0: आपा दोनों
1: हाँ
0: क्यों
1: जी 15
0: कटी है ना,
1: जनवरी
0: जनवरी 15 है।
1: हाँ जी हाँ जी
0: हाँ ओके, तुसी स्मार्ट हो, थोड़ी जिंदगी च काम बहुत लिखा थोड़े कर्मा च परमात्मा ने, ठीक है? तुसी अगे भी काम करते
1: हाँ
0: रहना,
1: जी
0: फिरते तुरते रहना। कई लोग होंगे ने जिन्हों का काम करने मन नहीं करता, थोड़ा करता। दान दे विच विश्वास रखते हो,
1: हाँ जी
0: हिस्सा दसवंत जिहड़ा उहदे विच विश्वास रखते हो, बहुत दोस्ताना संबंध रखते हो, सारे ना काम रहने हो, पर
1: हाँ
0: तुहाडी
1: जी
0: काली दे कारण, तुहाडे कोल काली दा एक गुण नहीं हैगा, इह औगण आ। कई बार काली कीती ते एक
1: हाँ
0: जिहड़ा
1: जी
0: तुसीं किसे तों गल सुण के, जिवें मैं पहलां कह रहा सी, किसे तों सुण के अपने ते असर बहुत छेती कर लैंदे हो।
1: बहुत ज्यादा हाँ जी
0: हाँ जी, ये
1: थैंक
0: दो तुहाडियां प्रॉब्लम ने, इन्हां सॉल्व करो, तीन होर ने तुहाडियां अगली बार दसूंगा,
1: यू ओके
0: ठीक है?
1: ओके थैंक
0: काली किसी
1: यू
0: भी चीज दे
1: थैंक
0: विच
1: यू
0: मतलब रिलैक्स हो जाओ, उवें ही होना जिवें होना हैगा,
1: श्योर श्योर
0: ठीक है? एफर्ट्स नहीं ज्यादा
1: हाँ
0: कर ले
1: जी
0: उन्हों
1: हाँ
0: करन ले,
1: जी हाँ जी
0: ते थोड़ा काम बहुत वधिया चली जाऊगा
1: ओके
0: सारा कुछ, ठीक है? नजारा वालों ये प्रोग्राम का हिस्सा स्पॉन्सर किया जा रहा है, तवा किचन वालों, तवा किचन ते नजारा दो अलग अलग अलग रेस्टोरेंट्स ने। हेलो जी, रेडी की आवाज बंद कर दो, सेकंड कॉल। हेलो जी, रेडी की आवाज बंद कर दो, बंद है ओ भाई, गल कर लो चजना रेडियो से कॉल करके। हेलो
2: जी, सुल्तान कुरैशी
0: बोलिया करो ना यार, असि साडा तां गल बह जांदा बोल बोल के। हेलो,
2: मैंने पता तुसीं किस नाल गल कर रहे हो, मेरा नाम सुल्तान।
0: सुल्तान जी, पर तुसीं साडे वल भी ध्यान दो ना, असि तुहानूं कही जांदे आ।
2: हाँ जी मैं क्या शायद दूजे नाल गल कर रहे हो, क्योंकि पहले
0: नहीं नहीं
2: आवाज
0: मैं
2: आ रही
0: कट्टी
2: थी
0: गई कॉल, जब तुसीं रेडियो लाऊंगे फिर तुहानूं की पता लगना मैं की ना की गल करता पिया। जदों तुसीं लाइन मिल गई स्टूडियो च, तुहाडे फोन दे विचों आवाज आउणी शुरू हो जांदी है, रेडियो बंद कर दिया करो, क्योंकि रेडियो ते जिहड़ी आवाज अपनी जांदी है ओह 20 तों 30 सैकंड बाद जांदी है,
2: हाँ
0: ठीक
2: जी
0: है?
2: बंद हो
0: अपनी कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं हो पाउंदी। हुण ठीक है सुल्तान जी?
2: हाँ जी
0: डेट ऑफ बर्थ बोलो।
2: अक्टूबर 16
0: 16 अक्टूबर, संतोष वाला सुभाग है तुहाडा,
2: हाँ
0: ठीक है? हाँ जी संतोष, मेरे मेरे डेट ऑफ बर्थ दे नेड़े तेरे दे लोकां सुन के खुश बहुत हुंदी है, ये की बुरा कहूगा हुण अपने बारे
2: जी
0: नहीं, इहनूं खुशी इस चीज नहीं हुंदी मेरी चंगी है, इहनूं ऐ हुंदा वी बुरा की कहूगा अपने बारे
2: जी
0: है? हाँ
2: जी
0: देखिए खुशी देखो कि नहीं,
2: वेरी गुड थैंक यू,
0: मतलब सब तो बात खुश होंगे जो मेरी कोई बुराई आती है सामने इस तरह के लोग थोड़े नाल हो
2: जी।
0: बीरबल ना ना ना बीरबल तो अकबर की जोड़ी बन जाती है। हाँ बीरबल हर गल च अकबर के नुक्श कटे दिता सी,
2: सारे वॉइस सन। हाँ
3: मेरी एक फ्रेंड है, उन्हें लोग पता नहीं सी कि रेडियो आवाज दा, तुसी अमन जी तुसी ते सी इकट्ठे आ, सो उहदा फोन लिया मैं, मेरे नंबर तो तुहाडा फोन नहीं लग रहा सी, मैं उहदे फोन तो तुहाडा नंबर डायल किया, तो तुहाडा नाम पता की सेव किया सी।
0: हाँ

0: बारह बज चुके हैं और असी यूं गए यूं वापस आए. थैंक यू सो मच.
1: CHLO AM, an Evanoff communication station serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca.
2: You, even when you're not there. Discover a rare opportunity at an exclusive open house in Huntsville, where peaceful surroundings, year-round enjoyment, and endless outdoor adventures meet proven investment potential. This exceptional property offers 3 bedrooms, modern finishes, and lake access nearby. Curious to learn more? Visit the open house Saturday, July 25th from 1 till 3, or contact Jay Gundam, Remax Gold Realty, Inc. at 416-265-2222.
3: Get to see space, comfort, and value deep Palvichu. टेमराइक अपार्टमेंट्स लेके आए ने खूबसूरत सुइट्स वो भी लीज पे शानदार मूवमेंट ऑफिस दे नाल. अपना टूर बुक करन ले आज ही कॉल करो 780-239-5845 780-239-5845.
1: This is AM 530 CHLO AM serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA and the world at am530.ca.
4: पापा पापा सुनते क्यों नहीं, चॉकलेट लेनी है.
5: अजी सुनते हो, कहाँ गुम हो.
6: अरे महेश अभी तक ऑफिस नहीं आए, पता नहीं मीटिंग थी. हेलो हेलो हेलो.
7: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता. बम्प टू बम्प ट्रैफिक एंड बम्प टू बम्प कॉल्स, ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 to 10 मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 to 1 रेडियो आवाज.

0: सब्सिडी फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेज या रीफाइनेंस करवाना चाहते हो तब तुसी भी अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015
1: हेलो एएम 530 तो तुसी सुन रहे हो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो
2: टुडे विच लाइव गलबात कर ली हुने कॉल करो 905-564-6444
1: 905-564-6444
2: सुनते रहो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो चलो एएम 530 तो
3: हेलो एएम 530 तो तुसी सुन रहे हो अपना हरमन प्यारा रेडियो प्रोग्राम देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो पिछले 30 वर्षों तो तुहाडे अंग संग देश प्रदेश हुण अपने शाम दे प्रोग्राम दे विच वादा कर चुका पहला तुसी सुनदे सी मंडे टू फ्राइडे 4 तो 6 लेकिन हुण तुसी सुनदे हो 3 तो 6 शामी जाने के देश प्रदेश तुहाडे लई शाम नूं 3 घंटे पेश हुंदा है ते नाल तुसी दुपहरे सैटरडे 1 तो लैके शाम दे 4 बजे तक देश प्रदेश नाल सांझ पौंदे हो देश प्रदेश रेडियो प्रोग्राम दे विच कोई भी अपने काम कार दी एडवरटाइज करनी होवे तां अफोर्डेबल पैकेज लई अज ही कॉल करो सम्राज सिद्धू होरां नूं 416-457-3381 416-457-3381 जां तेजिंदर सिंह सिद्धू दे नाल कॉल करो 416-725-2551 416-725-2551 देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो पिछले 30 वर्षों तो 7 डेज़ अ वीक तुहाडे अंग संग चलो

0: अगर कोई हमने अब इतने लोग हमारे पास आते हैं मतलब कहते हैं सर वो बंदा कमीशन लेते हैं लेते वो लेते हैं सर जी हमारा साफ काम है हमारे ऑफिस में एक दिन में 20 बंदा आता है उनके ऑफिस में और एजेंटों के ऑफिस में दिन में 2 बंदे जाते हैं वो तो उन्हीं के पीछे कॉल ही करते रहते हैं उनको आप तो कॉल ही नहीं करते क्लाइंट आ गया चला गया रिटेल ही जाते ज्यादातर
1: $199 तुम लोगे परिवार के खातों से 40-50-60-80,000 भी आ सकता है सो नंबर साझा करो जी
0: हाँ जी और इसमें ग्रांट बंद हो रही है इसी हफ्ते एनरोल करें 30-100,000 की फंडिंग हासिल करें जिसका आधा हिस्सा हाफ पोर्शन आज की डेट में क्या है ग्रांट्स एक हफ्ता नेक्स्ट वीक तक लास्ट बैच है ये मत बोलना उसके बाद सर ये कहा था
1: अच्छा ग्रांट बंद हो जाएगी दुआच
0: ग्रांट बंद एक
1: हफ्ता नंबर सानू छेती बोलो जी होना सी वी कांट वेट
0: 437-234-3175 437-264-3175 होने जी ऐसे ऑफिस ही है कॉल कर लो एस्टीमेट ले लो 437-234-3175
1: अप्रूव हो गया जो खाते पैसे आ गए $199 या $499 पे कर देने सारी गलबात लिए मन च कोई होर क्वेश्चन डायरेक्ट कॉल कर लो 437-264-3175 437-264-3175 437-264-3175 437-264-3175 437-264-3175 437-264-3175 बहुत शुक्रिया जी धन्यवाद
0: थैंक यू

आदाब नमस्कार प्यार सत्कार दिनाल सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड इवनिंग। वापस आ गए हैं जी शनिवार की शाम की महफल दे विच एक बार फिर तो तुसी ठीरन कर चुके हो थोड़ा अपना प्रोग्राम रेडियो अंदाज थोड़ी अपनी होस्ट परम दे नाल। मेरे वालों साढ़े सारे लिसनर्स नूं सारे परिवारों नूं बड़े अदब सत्कार दिनाल सत श्री अकाल बहुत सारा प्यार ढेर सारा सत्कार वेलकम जी आयानों खुश आमदीद एंड स्वागतम।

7:14 हो गया जी। चलो AM 530 ते तुसी सुन रहे हो थोड़ा अपना प्रोग्राम रेडियो अंदाज़। मैं थोड़ी होस्ट परम थोड़ा साथ दे रही हाँ। अज दा सवाल भी थानू पुछांगे, एक थानू सुनेहा होर दे दिए ते उस तो बाद फिर असी अपनी गलबात वाल चलांगे। ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलाइंसिस का सुनेहा दस दिए जी, अगर घर दे विच थानू अपलाइंसिस चाहिए आ, तुसी नवें घर च मूव हो रहे हो या फिर अपने घर दे विच थानू स्टोव चाहिदा, कल्ला फ्रिज चाहिदा, डिशवाशर चाहिदा या फिर किचन दे पूरे अपलाइंसिस चाहिदे आ, ते तुसी जरूर जरूर जरूर पहुँचना जी ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलाइंसिस, जिहड़े कि चंक्यूजी एंड बोवेट ते इंटरसैक्शन ते लोकेटर ने ब्रैम्पटन दे विच। पहुँचो ते फ्रिज स्टोव डिशवाशर थानू एक घर भेज देंगे, फ्री डिलीवरी होएगी। पर जे अगर पैसे नहीं है राइट वे तुसी पे नहीं कर सकते ते थानू 6 महीनों बाद तुसी पे कर सकते हो विदाउट एनी इंटरस्ट, कोई व्याज तुसी पे नहीं करना ते तुसी 6 महीनों बाद पे कर सकते हो जी। तुसी जरूर एक बार अपलाइंसिस ते टीवीस लैने होन तो ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलाइंसिस चंक्यूजी एंड बोवेड दे इंटरसैक्शन ते दहाकियां तो थोड़ी सेवा कर रहे हैं। 905-450-2828 905-450-2828 905-450-2828 ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलाइंसिस।

आंखों में है इकरार तो इनकार है लब पर, उस शोख की देखी है हया और तरह की। जब दर्द मेरे दिल में नहीं है और तरह का, ऐ चारा अगर क्यों है दवा और तरह की। जिक्र दर्द दिल का चलने लगा है तो ये दर्द ना तो आंखों से बयां होता है और ना ही लिखने से। हाँ, मगर जुबान कभी कभार बयां कर देती है, जैसे लता मंगेशकर ने अपनी मखमली आवाज में इस गजल को कुछ यूं कहा है।